एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 सिल्वर पैलेस विश्वसनीय सुरक्षित र भरपर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चांदी का एक्सक्लूसिव गहना लगायत भाड़ाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चांदी का सामानहरू को लागि सिल्वर पैलेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामानमा 100% शुद्धताको ग्यारेन्टी दिने एकमात्र सिल्वर पैलेस पसल नम्बर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं प्युखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा

0: सुंदर मुंचा कार्यक्रम ज्ञान दल। इस कार्यक्रम का प्रायोजक श्रेष्ठ टेलरिंग सेंटर बाग बाजार रचा वहेल।
1: श्रेष्ठ टेलरिंग सेंटर को प्रायोजन में आदरणीय श्रोता अहिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ज्ञानोदय। कार्यक्रम में कई सुमधुर भजन को क्रम में हुनुहुन्छ।

0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल मंगलम सोनम चामल मंगलम सोना स्टीम चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि।

कार्यक्रम भजन दीपांजलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। प्रत्येक मंगलवार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सर्व मांगलिक कामना का साथमा कार्यक्रम सर्व मंगलम सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रमहरू प्रायोजन गर्न अथवा यहाँको सेवा वा उत्पादनको विज्ञापन गर्न चाहनुहुने महानुभावहरूले 9841289820 मोबाइल नम्बर 9841289820 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साँझ 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुमधुर भजनहरूको सन्ध्या कार्यक्रम भक्ति सन्ध्या सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेश में निर्मित चांदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ।

सुन रेडियो अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज र अब एकैछिन समयतर्फ ध्यान दिउँ। यस बेला हाम्रो स्टुडियोको घडी अनुसार बिहान कोठी

चाहे लग जाए हथकड़िया मैंने तेरी बाह पकड़ ली, अब चाहे लग जाए हथकड़िया मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मैंने

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: मलाई ट्रैक सूट चाहियो,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनि सूट,
4: अनि मलाई

आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहां, इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं मेरा दिल मेरी जान। मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, सोच लो दोस्तों इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं।

0: फ्लैशबैक
1: दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं,
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है?
2: क्या है?
1: कह दूं तुम्हें या चुप

0: हम सब जाने,
1: हम सब जाने,
0: अरे हम सब जाने किधर किधर कितना घपला हो जाता है।
1: इधर का माल उधर का माल,
0: इधर का माल उधर जाता है, उधर का माल इधर आता है।
1: इधर का माल उधर जाता है, उधर का माल।

0: पाए। नेपाल टेलिकम को सहुलियत दर का पैकेज खरीद करना #14#15# गर्नुहोस्।
1: नेपाल टेलिकम राष्ट्र को संचार। One oh four eight.

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: मलाई ट्रैक सूट चाहियो,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनि सूट,
4: अनि मलाई

0: சாவேல் சுச்சபாடி.
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ.

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736। सिल्वर स्टेन जय माता दी गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736। सिल्वर स्टेट सभी भन्दा पुरानो चांदी को एकमात्र शोरूम
1: सिल्वर स्टेट यहाँ को सेवा में निरंतर लागी रहेका छौं। विगत दुई दशक देखि त्यसैले त हामी गर्व गर्छौं किनकि हामीले यहाँ को विश्वास जित्ना सफल भएका छौं।
0: सिल्वर स्टेट अत्याधुनिक प्रविधि बाट आफ्नै कारखानामा निर्मित बिना रसायन का पूजा सामग्री विवाह लगायत अन्य शुभ कार्यका लागि चाहिने यहाँले चाहे बमोजिम का चाँदी का हरेक प्रकार का सामग्री लगायत गिफ्ट आइटमहरुका लागि
1: सिल्वर स्टेट एउटै छाना मुनि चाँदी का सबै सामानहरु।
0: सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ शाखा शुक्रपथ विशाल बजार को अगाडि फोन नंबर 4227345423535।
2: इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड यहाँको विश्वासिलो र भरपर्दो वित्तीय सहयात्री। हाम्रा विशेषताहरू निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दर सरल र सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह देशै भरि रहेका शाखाहरूबाट निशुल्क एबीबीएस कारोबार सुविधा सी आसबा सुविधा कारोबारको जानकारी दिन एसएमएस अलर्ट सुविधा निशुल्क चेक बुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड दिल्ली बजार गुर्जुको चौक काठमाडौँ।
3: टुगेदर वी डेलिभर।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू। फोन नंबर 42 43 736।
1: सौंदर्य कसलाई मन पर्दैन र संस्कार कसले भुल्न सक्छ र सौंदर्य र संस्कार जसले यहाँलाई यहाँको पहिचान गराउने छ।
0: सिल्वर प्यालेस प्युखा कर्नर न्यू रोड नेपाली हस्तकलामा समर्पित सिल्वर प्यालेस।
2: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: तुम्हारी शादी को कितने दिन हो गए?
1: 2 हफ्ते।
0: अब भी बताना होगा क्या जी चाहता है, क्या जी चाहता है, क्या जी चाहता है, क्या जी चाहता है, क्या जी चाहता है, क्या जी चाहता है, क्या जी चाहता है, क्या जी चाहता है, क्या जी चाहता है, क्या जी चाहता है, क्या जी चाहता है, क्या जी चाहता है, क्या जी चाहता है।

0: प्यालेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभावहरूले मोबाइल नंबर 98

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: स्वेटर जैकेट कति लगन सकते होला अलि हलुका भएर हिँड न है।
2: जाडो भएपछि लगाउनु परेन त।
1: खै मलाई त लगाउनु परे छैन त। मैले जस्तो थर्मोकोल लगाउन न्यानो भइहाल्छ नि।
2: ह्या, एक दुई दिन मात्र त हो नि, पछि त कामै गर्दैन नि।
1: मेरो जस्तो पिक्सी चार्जर ब्रान्डको लिऊ न, कहिल्यै मन चिसो बनाउनु पर्दैन, जहिले जिउ तातो राख्छ। पिक्सी चार्जर थर्मोकोल लगाऊ, जाडो फगाऊ।
3: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
4: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
3: त्यसैले शुद्धता नै खोजौ।
5: सुन चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइन को उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जे जे ज्वेलर्स के किन्नुस।
6: जे जे ज्वेलर्स बसंतपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी।
7: संपर्क नंबर 5320411 98020 76888।
5: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM AJ 104.8 megahertz.

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिंग
2: चीर परिचे।

0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल मंगलम सोनम चामल मंगलम सोना स्टीम चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि।

0: वीर्य से उत्पन्न तथा ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त अमित शक्तिधारी वृत्रासुर विराट काय बनकर स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके इंद्र तथा देवताओं को पराजित करता है तथा इंद्र को अपनी मुट्ठी में बंदी बनाकर उसे अपना आहार बना लेता है। इंद्र को ग्रास बनाकर खा जाने वाले वृत्रासुर से भयभीत देवतागण इंद्र की मुक्ति का उपाय पूछने के लिए देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचते हैं। देवगुरु बृहस्पति इंद्र की अर्धांगिनी शची को शक्ति आराधना का परामर्श देते हैं। शची अपने पति की प्राण रक्षा के लिए जब माता शक्ति का आह्वान करती है तो माता शक्ति आकाशवाणी द्वारा शची को आश्वासन देती है कि उसके पति इंद्रदेव योग माया के प्रभाव से शीघ्र ही सकुशल वृत्रासुर के उदर से बाहर आ जाएंगे। योग माया के प्रभाव से निद्रामग्न वृत्रासुर जमुहाई लेता है तो इंद्र बाहर आकर स्वर्ग से पलायन कर जाते हैं। चेतना लौटने पर वृत्रासुर देवताओं से इंद्र के बारे में पूछता है तो कोई देवता इंद्र के बारे में बता नहीं पाता। तत्पश्चात इंद्र तथा देवतागण भगवान शिव की शरण में कैलाश पहुंचते हैं तथा वृत्रासुर के संहार की प्रार्थना करते हैं। भोलेनाथ देवताओं को परामर्श देते हैं कि वृत्रासुर का अंत शक्ति से नहीं युक्ति से ही किया जा सकता है, इसलिए इंद्र के लिए उससे मित्रता करना ही कार्यकारी होगा। इंद्र तत्पश्चात स्वर्ग पहुंचता है तो वृत्रासुर के राक्षस उसे पकड़कर वृत्रासुर के पास ले आते हैं। इंद्र युक्ति का प्रयोग करके वृत्रासुर को मित्र बना लेता है। इंद्र के वाक जाल में फंसकर वृत्रासुर उसे गले लगा लेता है। वृत्रासुर को मित्र बनाकर इंद्र उसका विश्वास अर्जित कर लेता है और फिर ब्रह्मा जी के वरदान की सीमाओं में रहकर कपट पूर्वक संध्या काल में अपने वज्र से उसका वध कर देता है। मरते समय वृत्रासुर आर्तनाद करता है जिसे सुनकर त्वष्टा का कोप जाग उठता है। वो अपने शक्ति यज्ञ से काले रंग की ब्रह्म हत्या उत्पन्न करके इंद्र को शाप देता है कि वो ब्रह्म हत्या के पाप से कलंकित हो जाए। ब्रह्म हत्या के स्पर्श से इंद्र के शरीर का वर्ण काला हो जाता है। बृहस्पति उसे प्रायश्चित करने का परामर्श देते हैं। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति सप्तर्षियों का आह्वान करके स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने की योग्यता रखने वाले विशिष्ट व्यक्ति के विषय में पूछते हैं। सप्तर्षि सोच विचार के पश्चात शिव भक्त नहुष को इंद्र के स्थान पर प्रतिष्ठित करने का परामर्श देते हैं। सप्तर्षियों के परामर्शानुसार देवगुरु बृहस्पति पृथ्वीवासी शिव भक्त नहुष को स्वर्ग लोक आमंत्रित करके उसे स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन कराते हैं। उधर इंद्र के वियोग से दुखी इंद्राणी शची माता शक्ति से प्रार्थना करती है। माता शक्ति प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहती है कि उसका पति इंद्र जीवित है तथा मान सरोवर में शिवाराधना करते हुए ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर रहा है। शची की प्रार्थना पर माता शक्ति उसे मान सरोवर पहुंचने का आशीर्वाद देती है।
1: स्वामी,
2: नाथ,
1: शची,
2: स्वामी, स्वामी,
1: शची,
2: स्वामी, स्वामी कहाँ हैं आप?
1: शची, शची, मैं यहाँ हूँ।
2: कहाँ है स्वामी? स्वामी कहाँ है?
1: मान सरोवर के जल में। ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं
2: स्वामी।
1: जब तक भगवान शिव शंकर की कृपा से यह प्रायश्चित पूर्ण नहीं हो जाता तब तक मुझे इसी स्थान पर रहना होगा। परंतु आश्चर्य है तुम यहां कैसे पहुंची और तुम्हें इस स्थान के विषय में किसने बताया?
2: शक्ति ने। माता शक्ति मेरी आराधना से प्रसन्न हुई और
1: मैं समझ गया शची, शिव सती की कृपा के बिना किसी विपत्ति का अंत नहीं होता। हमारी इस विपत्ति का भी अंत अब निकट है।
2: जब तक ऐसा नहीं होता स्वामी मैं आपके साथ ही रहूंगी।
1: नहीं नहीं शची, अपने अपराधों का प्रायश्चित हर व्यक्ति को स्वयं करना होता। तुम तो पुण्यशालिनी पतिव्रता, तुमने कोई अपराध नहीं किया, प्रायश्चित तुम क्यों करोगे?
2: अपने पति का साथ निभाना हर पतिव्रता का प्रथम कर्तव्य है स्वामी। आप कष्ट भोगते रहे और मैं देखती रहूं, ये नहीं हो सकता स्वामी, ये नहीं हो सकता है। मैं भी यही आपके साथ ही रहूंगी स्वामी।
1: नहीं देवी शची, मेरी बात मानो और स्वर्ग लौट जाओ। स्वर्ग के साम्राज्य का पद तुमसे कोई नहीं छीन सकता। स्वर्ग में रहकर वहां पर होने वाली घटनाओं पर दृष्टि रखो, बस इस समय यही तुम्हारा कर्तव्य है।
2: स्वामी माता शक्ति ने प्रसन्न होकर मुझे ये वरदान दिया है कि आप स्वर्ग सिंहासन पर पुनः आसीन होंगे। चलिए स्वामी, मैं आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आई हूं।
1: नहीं शची, जब तक भगवान शिव शंकर मुझे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त नहीं कर देते मैं यहां से नहीं निकल सकता।
2: प्रायश्चित होने तक मैं यही रहना चाहती हूँ स्वामी। यदि आप मुझे पहले बता देते तो मैं आपका साथ कभी ना छोड़ती।
1: अब तो माता शक्ति ने तुम्हें वरदान भी दे दिया, तुम्हारे पुण्य प्रताप से मैं स्वर्ग का सिंहासन पुनः प्राप्त करूं।
2: मैं आपसे विनती करती हूँ स्वामी, मुझे यही रहने दीजिए। आपके बिना स्वर्ग मेरे लिए नर्क के समान है स्वामी।
1: नहीं शची, तुम यहां रहोगी तो मेरे प्रायश्चित में बाधा उत्पन्न होगी। मेरी बात मानो और स्वर्ग लौट जाओ, वहां मेरे आने की प्रतीक्षा करो।
2: जो आज्ञा स्वामी, मैं स्वर्ग में आपकी प्रतीक्षा करूंगी। हे भगवान आशुतोष, मेरे स्वामी को शीघ्र ही ब्रह्म हत्या के पाप से

0: नृत्य बंद क्यों कर दिया?
1: आपसे एक विशेष निवेदन है स्वर्गाधिपति।
0: कहो क्या बात है?
1: किंतु महाराज,
0: हमें एकांत चाहिए। नृत्य बंद क्यों कर दिया?
1: आपसे एक विशेष निवेदन है स्वर्गाधिपति।
0: कहो क्या बात है?

0: कहो क्या बात है?
1: अपराध क्षमा हो महाराज, स्वर्ग के सिंहासन पर हमने सदा ही देवराज इंद्र के साथ महारानी शची को बैठे देखा है। उनके बिना ये सिंहासन सूना सूना लगता है।
2: आप ही बताइए महाराज, इस सूने सिंहासन के सम्मुख हमें नृत्य का उत्साह कैसे जागेगा?

0: तो क्या स्वर्ग साम्राज्य देवी शची हमारे साथ इस सिंहासन पर बैठना स्वीकार करेंगी?
1: महाराज, स्वर्गाधिपति की इच्छा का सम्मान करना उनका कर्तव्य है। यदि आप आज्ञा दें तो हम स्वयं जाकर आपका प्रस्ताव उन तक पहुँचा सकते हैं।
0: तो स्वर्ग की महारानी शची तक हमारा ये संदेश पहुँचा दिया जाए। स्वर्ग के सिंहासन पर सदैव उनका स्वागत है।
2: जो आज्ञा महाराज।

0: मनुष्य भले ही बड़े से बड़ा धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, यदि उसके मन में वासना का विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है।
1: महाराज की जय हो।
2: क्या कहा देवी शची ने?
3: अपराध क्षमा हो स्वर्गाधिपति, किंतु देवी शची आपका संदेश सुनकर भयभीत हो गई हैं।
2: भय? हमसे कैसा भय?
3: यदि उन्होंने आपका प्रस्ताव स्वीकार किया तो सर्वत्र उनकी निंदा होने लगेगी और ये देवराज इंद्र के प्रति भी अपराध होगा।
2: इस समय स्वर्ग के सम्राट हम हैं, इंद्र नहीं। स्वर्ग के सिंहासन पर महारानी शची का भी उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा है। जो भी व्यक्ति इस सिंहासन पर बैठता है उसका संबंध महारानी शची से अपने आप जुड़ जाता है।
3: परंतु महाराज, उन्हें यहाँ आने में संकोच हो रहा है।
2: उनका संकोच हम दूर करेंगे। कहाँ है वो?
3: नंदनवन में।
2: नंदनवन में?

0: ശശി, ഇസ് നിർണായക ഘടി മേ ക്യാ സോച് രഹി ഹൂ ശശി? മേരാ പതിവ്രത ധർമ്മ സങ്കട മേ ഹൈ, മേ ക്യാ കരൂ?
1: അപ്നെ സുഹാഗ് കി രക്ഷാ ഔർ പതി കല്യാൺ കി കാമനാ ഹൈ, പതിവ്രതാ കാ പ്രഥമ കർത്തവ്യ ഹൈ. ഭലേ ഹി ഉസ്കി പ്രാൺ ക്യൂ ന ചലേ ജായേ, किंतु नहुष स्वर का स्वामी है. उसने अपने सम्मुख आने के लिए मुझे विवश कर दिया है. उसके सम्मुख आते ही मेरा सदित्व कलंकित हो जाएगा.
2: अपने अर्जित पुण्य द्वारा नहुष स्वर का स्वामी बना था, पर स्त्री की कल्पना मात्र से ही अर्जित पुण्य शून्य हो जाता है.
1: एक पतिव्रता नारी के प्रति मोह उत्पन्न होना उसकी अंतरात्मा में पाप के उदय का प्रतीक है.
0: मेरे सतित्व की रक्षा और पति का कल्याण कैसे संभव है?
1: माता शक्ति की आशीर्वाद को भूल गए शची?
2: माता शक्ति ने स्वयं ही कहा है कि एक दिन देवराज इंद्र स्वर्ग सिंहासन पर पुनः प्रतिष्ठित होंगे.
1: किंतु नहुष के होते हुए देवराज इंद्र स्वर्ग सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, अर्थात नहुष सदा के लिए स्वर्ग का स्वामी नहीं है.
0: उसके सम्मुख आने पर मुझे क्या करना होगा?
2: वो स्वयं नरगामी हो रहा है शशि. तुम्हें अपने पुत्री विवेक द्वारा उसके नर्क जाने का मार्ग प्रशस्त करना होगा. तुम्हारे और तुम्हारे पति देवराज इंद्र के कल्याण के लिए एकमात्र उपाय यही है.

0: महाराज नहुष का स्वागत है।
1: ये आप क्या कह रही हैं? आप तो स्वर्ग की साम्राज्ञी हैं, फिर मेरे सम्मुख नतमस्तक क्यों?
0: स्वर्ग साम्राज्ञी हूँ नहीं महाराज, थी।
1: स्वर्ग के सिंहासन पर आज भी आपका उतना ही अधिकार है जितना कि पहले था।
0: भला ये कैसे संभव है महाराज? इस समय स्वर्गाधिपति तो आप हैं, मेरे पति देव इंद्र तो नहीं।
1: देवी, आप ये न भूलें कि आप स्वर्गाधिपति की पत्नी हैं और स्वर्गाधिपति के संपूर्ण अधिकार अब मेरे पास हैं।
0: आप सर्वदा स्वर्ग सिंहासन के योग्य हैं महाराज।
1: फिर आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए देवी। जैसे इंद्र के साथ आप स्वर्ग के सिंहासन की शोभा बढ़ाती थी, उसी प्रकार हमारे साथ थी।
0: मैं एक देव पत्नी हूँ, भला ये कैसे संभव है? क्या ये धर्म और मर्यादा के विपरीत नहीं होगा?
1: आप हमें हमारे अधिकारों से वंचित कर रही हैं देवी। अब स्वर्गाधिपति इंद्र नहीं हम हैं, नारी पुरुष का आभूषण है और स्वर्ग सिंहासन आपके बिना अधूरा लगता है।
0: स्वर्ग में अनेकों सुंदर अप्सराएं हैं महाराज, आप उनमें से किसी को भी अपने स्वर्ग सिंहासन की शोभा बना सकते हैं।
1: स्वर्ग सिंहासन पर बैठने का अधिकार आपका है देवी, अप्सरा का नहीं।
0: पर पुरुष के साथ स्वर्ग सिंहासन पर मेरा बैठना क्या धर्म संगत है? क्या इसे एक पतिव्रता नारी की मर्यादा कलंकित नहीं होती?
1: इसे धर्म संगत बनाने के लिए मैं आपसे विधिवत विवाह करूंगा।
0: विवाह? अपने सुहाग की रक्षा और पति कल्याण की कामना है पतिव्रता का प्रथम कर्तव्य है, भले ही उसके प्राण क्यों न चले जाए।
1: देवी कहाँ खो गई? विवाह ही हमारे संबंध को धर्म संगत बनाएगा। यदि आप स्वीकृति दें तो शीघ्र विवाह का प्रबंध करूं।
0: तुम्हें अपने बुद्धि विवेक द्वारा उसके नर्क जाने का मार्ग प्रशस्त करना होगा। तुम्हारे और तुम्हारे पति देवराज इंद्र के कल्याण के लिए एकमात्र उपाय यही है।
1: क्या सोच रही हो देवी?
0: इतने अधीर क्यों हो रहे हैं महाराज? हमें भी तो इस विषय पर विचार करने दीजिए ना।
1: हमारे धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है देवी। यदि आप सहमत हैं, तो विचार करने का समय क्यों? आज्ञा कीजिए।
0: आप स्वर्ग के महाराज हैं, एक दासी स्वामी को आगे कैसे दे सकती है?
1: ऐसा न कौशल जी, तुम स्वर्ग की स्वामिनी नहीं मेरे हृदय स्वामिनी भी हो।
0: यदि आप मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाना ही चाहते हैं, तो ये मेरे लिए गौरव की बात होगी, मैं निंदनीय नहीं रहूंगी।
1: देवी मैं धन्य हुआ, मेरी आत्मा तृप्त हुई, मैं इसी समय आपसे पुनः संबंध स्थापित करता हूँ।
0: यदि आप मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाना ही चाहते हैं, तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है।
1: प्रार्थना क्यों? आज्ञा दो देवी।
0: जिन सप्तऋषियों ने आपको स्वर्ग सिंहासन पर आसीन किया है, आप वर रूप में अपनी डोली उन्हीं से उठवा कर लाएं।
1: सप्तऋषि डोली उठा कर लाएं, इससे तुम्हें क्या लाभ होगा?
0: मैं पतिव्रत धर्म को छोड़कर आपकी होने जा रही हूँ। यदि सप्तऋषि आपकी डोली उठाकर मेरे द्वार तक आएंगे, तो इससे उनकी मान्यता प्राप्त हो जाएगी और ये विवाह धर्म अनुसार माना जाएगा।
1: आपकी आज्ञा का पालन होगा देवी, सप्तऋषि ही हमारी डोली उठाकर लाएंगे।

0: तथा देवगुरु बृहस्पति, हम आप सबके सम्मुख एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहते हैं। स्वर्ग साम्राज्ञी महारानी शची हमसे विवाह करेंगी।
1: देवी शची आपसे विवाह करेंगी? भला ये कैसे संभव हो सकता है महाराज?
0: क्यों नहीं, हम स्वर्ग के सम्राट हैं, हमसे विवाह करना महारानी शची का अधिकार और कर्तव्य है। हम धर्म पूर्वक सप्त ऋषियों को साक्षी बनाकर महारानी शची से विवाह करेंगे।
1: धर्म प्रवर्तक, धर्म रक्षक, विधि के नियमों से बाध्य धर्म पालक सप्त ऋषि क्या इस विवाह की अनुमति देंगे?
0: जिन सप्त ऋषियों ने हमें आग्रह पूर्वक स्वर्गाधिपति बनाया, वे हमें इस विवाह में अवश्य सहयोग देंगे। देवगुरु, हम विवाह के लिए जिस पालकी में बैठ कर जाएंगे, उस पालकी को सप्त ऋषि ही उठाएंगे।
2: ये कैसे संभव है महाराज?
1: ये आप क्या कह रहे हैं?
0: हाँ, सप्त ऋषियों को शीघ्र यहां बुलाया जाए, उनसे कहा जाए कि यह महाराज नहुष का आदेश है।
3: महाराज नहुष के आदेशानुसार सप्तर्षि नहुष की पालकी लेकर इंद्राणी के पास जाते हैं।
0: शीघ्रता करो ऋषियों, हमें शीघ्र शची के पास पहुंचना है।

0: तुम सब रुक क्यों गए?
1: भार बहुत अधिक है नहुष, हम सब थक गए हैं।
2: इससे और शीघ्र गति से हम नहीं चल सकते नहुष।
0: जानते हुए तुम्हारा धीमापन हमें कितना विवल कर रहा है। हम स्वर्गाधिपति हैं, हमारी आज्ञा का पालन करो, शीघ्र चलो। मैं कहता हूँ सर्प की भांति चलो।
1: हमारे कंधों पर बाप का भार इतना बढ़ गया है नहुष कि आगे बढ़ना कठिन हो रहा है।
0: मेरा बाप बढ़ गया, मेरी आज्ञा का पालन करो तुम लोग। इष्ट सप्रिशियों, तुम लोग मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो।

0: बड़े दुष्ट कामुक नहुष, सत्ता के मत में चूर, वासना में अंधे होकर तूने एक ऋषि आत्मा को सर कहकर प्रताड़ित किया है। क्या मैं तुझे शाप देता हूँ दुष्ट नहुष, तू सर बनकर नरक हो।
1: इस प्रकार अपने अधर्मपूर्ण विचार तथा ऋषियों के अपमान से शापित हुआ तथा भयानक सर्प बनकर नरक यातना भोगने के लिए स्वर्ग से पतित हो गया।

0: कृपा से मैं पाप मुक्त हो गया।
1: ओमकारेश्वर भगवान श्री शिव शंकर की जय।
2: गुरुदेव, ओंकार शब्द एवं ध्वनि क्या भगवान शिव के ही प्रतीक हैं?
1: तुमने सत्य कहा भाई, सत्य कहा। इस ओंकार से ही भगवान शिव का परम प्रिय पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय प्रारंभ होता है। इस ओंकार ध्वनि में ही शिव तत्व का सार समाया हुआ है।
3: गुरुदेव,

0: महाराजा मानधाता तथा विंध्य की शिव आराधना के उद्देश्य भिन्न भिन्न थे, किंतु भगवान शिव शंकर दोनों पर प्रसन्न हुए। इसके फलस्वरूप नर्मदा के तट पर दो ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई।
1: गुरुदेव, क्या नर्मदा नदी के तट पर दो दो ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई है?
0: हां भक्त, तुम्हारा अनुमान सही है। नर्मदा नदी का पावन जल भगवान शिव को विशेष प्रिय है, इसीलिए वहां के लोगों में एक मान्यता प्रचलित है, नर्मदा के जितने कंकर उनका नाम है शंकर। किंतु इन दोनों ज्योतिर्लिंगों की विशेष महत्ता है।
1: गुरुदेव, क्या इन दोनों ज्योतिर्लिंगों का नाम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ही है?
0: नहीं नहीं भक्त, नर्मदा के उस पावन तट पर दो ज्योतिर्लिंग आमने सामने हैं। एक का नाम है ओंकारेश्वर और दूसरे का नाम है अमलेश्वर। यही अमलेश्वर वहां की लोक भाषा में ममलेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। बोलो ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंगों की जय।
2: जय।
0: भक्तों, अब मैं तुम्हें इन दोनों ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाता हूं। यह कथा परम शिव भक्त महाराज मानधाता से संबंधित है।
3: महाप्रतापी धर्म

0: महाराज की जय हो। महाराज, राज सिंहासन पर स्वयं न विराजमान होकर आपने अपना राजमुकुट क्यों स्थापित कर दिया?
1: महामंत्री, अब मैं इस राजमुकुट का बोझ नहीं उठा सकूंगा, इसीलिए राज सिंहासन और राजमुकुट दोनों का ही सदा सदा के लिए त्याग कर रहा।
0: नहीं महाराज, नहीं, आप ऐसी अप्रिय बात ना कहिए। आपके शब्द हमारे कानों में गर्म लावे की भांति पीड़ा पहुंचा रहे हैं।
1: मैंने पीड़ा पहुंचाने के उद्देश्य से ये बात नहीं कही है महामंत्री, ये तो मेरे हृदय में उमड़ते वैराग्य की वाणी है। आज से मैं इस राजभवन का सदा के लिए त्याग कर रहा हूं।
0: नहीं महाराज, नहीं,
2: ऐसा ना कहिए महाराज,
3: ये हमारे प्रति अन्याय है महाराज।
4: नहीं महाराज, आप अपना निर्णय बदल दीजिए।
1: ये निर्णय मैंने बहुत सोच विचार के पश्चात किया है।
0: ऐसा कठोर निर्णय किस लिए महाराज?
1: आज तक मैं अपने आप में भटका हुआ था, किंतु अब मैं अपने आप से मुक्त होना चाहता हूँ, सारे बंधनों को अब तोड़ देना चाहता हूँ।
4: महाराज, आप पर हमारा भी कुछ अधिकार है महाराज, आप हमारे पालक पिता हैं, हमारे रक्षक हैं।
0: आपकी छत्र छाया के बिना हम सब अनाथ हो जाएंगे महाराज, हम सब अनाथ हो जाएंगे।
1: भगवान शिव शंकर ही हम सबके नाथ हैं, मैं अब उन्हीं की शरण में जा रहा हूं।
4: हम आपको नहीं जाने देंगे महाराज।
2: पिताश्री,
5: क्या आपने राज सिंहासन का त्याग कर दिया है?
1: क्या ये सच है पिताश्री?
6: हाँ पुत्र, ये सच है। मैं आज से राज सत्ता, राजभवन सब कुछ त्याग रहा हूं।
7: ऐसा कठोर निर्णय लेने से पहले आपने हमें बताया तक नहीं।
5: पूज्यता, क्या हम दोनों भाइयों से कोई अपराध हुआ है?
1: नहीं, आप दोनों भाइयों को मैंने ऐसे शुभ संस्कार दिए हैं, क्या भूल से भी कोई अपराध नहीं।

0: मैंने स्वेच्छा से लिया है, परंतु आपके कठोर निर्णय का उद्देश्य क्या है?
1: शिव,
0: केवल शिव भक्ति।
1: दिन रात आप शिव की भक्ति ही तो किया करते हैं पिताश्री। सभी मानते हैं आप राजा से पहले शिव भक्त हैं।
2: पूरे राज्य में आपने शिव मंदिरों की श्रृंखला खड़ी कर दी है। संपूर्ण राज्य शिवमय हो गया है।
1: क्या आप इतनी शिव भक्ति से भी असंतुष्ट हैं?
0: नहीं वत्स, शिव भक्ति करते हुए मैंने राज सत्ता का मोह नहीं छोड़ा और इसीलिए मुझे आज तक शिव कृपा प्राप्त नहीं हुई। अब मैं किसी तपोभूमि में जाकर निर्मोह होकर तप करूंगा।
1: क्या आपकी दृष्टि में भक्ति और तप में अंतर है?
0: बहुत बड़ा अंतर है पुत्र। भक्ति करते हुए देह बोध और कर्म बोध शेष रहता है, किंतु तप का मात्र एक ही उद्देश्य रहता है, सब कुछ भूलकर सच्चिदानंद परमेश्वर शिव के चरणों में समर्पित हो जाना। जब समर्पण का यही बोध अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो भक्त और भगवान एकाकार हो जाते हैं।
2: पिताश्री, आप ही ने हमें समय समय पर उपदेश दिया है कि तन मन से प्रजा की सेवा भी एक प्रकार की तपस्या है।
0: अब इस उपदेश का पालन आप दोनों भाइयों को करना है। मेरी तो अंतिम इच्छा यही है कि इसी जीवन में परमेश्वर शिव शंकर के साक्षात दर्शन करूं या उन्हीं की आराधना करते करते प्राणोत्सर्ग कर दूं।
3: मन में जब निष्काम भक्ति की भावना जागृत होती है, मनुष्य सारे संसारिक सुखों को त्याग कर भक्ति मार्ग की ओर चल पड़ता है। राजा मानधाता, आप धन्य हैं। अपने आप को भगवान शिव को समर्पण करके समस्त राजपाट को त्याग कर आप शिव भक्ति में लीन हो गए। आपकी शिव भक्ति धन्य है।
4: पर्वतराज विंध्य,

0: विंध आपकी सेवा में उपस्थित है महाराज मानधाता।
1: मैं अब महाराज नहीं, केवल मानधाता हूँ विंध्यराज। आपकी इस पवित्र भूमि पर भगवान भोलेनाथ का तप करने की अनुमति चाहता हूँ।
0: यह तो परम सौभाग्य की बात है, किंतु यह तो बताइए शिवभक्त, आपने इस स्थान को अपनी तपोभूमि बनाने का निश्चय क्यों किया?
1: पर्वतराज, संस्कार की प्रेरणा से ही संस्कार की उत्पत्ति होती है। इस धरती के सौंदर्य से मुग्ध होकर ब्रह्मा ने यहां ब्रह्मपुरी, विष्णु ने वैकुंठपुरी और भगवान शिव ने रुद्रपुरी का निर्माण किया था। इन्हीं तीनों पुरियों को त्रिपुरी भी कहते हैं। ये वही पावन स्थान है जहां देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर स्वयं भोलेनाथ अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। महान ऋषि मुनियों ने इसी तपोभूमि पर अपनी सिद्धियां भी प्राप्त की हैं।
0: धन्य धन्य, आप शिव भक्त ही नहीं परम ज्ञानी भी हैं। आप निर्विघ्न तप आरंभ करें, मैं आपकी सफलता के लिए हृदय से शुभकामना व्यक्त करता हूं।
1: आपकी शुभकामना लक्ष्य प्राप्ति में मेरी सहायक होगी।
0: आपकी सफलता मेरे भविष्य की एक कल्पना से जुड़ी हुई है शिव भक्त।
1: आपके भविष्य की कल्पना? मैं समझा नहीं पर्वतराज।
0: एक दिन आपकी निष्ठा भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ आपको अवश्य दर्शन देंगे, तब आप मेरे लिए भी एक वर मांग लीजिएगा।
1: क्या वर मांगना है आपके लिए?
0: यही कि भगवान भोलेनाथ मुझे मेरु पर्वत से भी ऊंचा बनाने की कृपा करें। किस विचार में पड़ गए महाराज? निर्विघ्न तप आरंभ कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी।

प्रिय भाग्य, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं।

0: ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में आप सदा विराजमान रहे और जो भी प्राणी भक्ति भावना से अपनी मनोकामनाओं के साथ आपकी शरण में आए उसकी इच्छा पूर्ण करे प्रभु।
1: तथास्तु।

0: बिहान को 5 बजिसके अब एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को नियमित प्रसारण आरंभ हो। प्रसारण प्रारंभ में आज को पंचांग
1: आज श्री सालीबहानी साखे 1948 सृष्टितो गताब्दा 1955-88 5127 कलेर गताब्दा 5127 साठी संवत्सर मध्ये 54 संवत्सर रौद्र नामक संवत्सर नेपाल देशीय संवत 1146 विक्रम संवत 2083 साल आषाढ महिनाको 16 गते मंगलबार तदनुसार जुन महिनाको 30 तारिक सन 2026 आषाढ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि पूर्व फाल्गुडी नक्षत्र ब्रह्म आनन्दादि योग कौलभ कर्ण मित्र योगा आज चन्द्रमा धनु राशिमा अवस्थित श्री सूर्य उत्तरायण यो महिना श्री सूर्य मिथुन राशिमा अवस्थित ताज काठमाडौँमा अहिले 5:13 सूर्योदय हुनेछ। शुभ प्रभात एवं नमस्कार। यो प्रभात कालिनी कार्यक्रम आराधनामा म प्रस्तोता युवेन्द्र अब आजको यो कार्यक्रम आराधनालाई सदा चाहिँ अगाडि बढाउँदै छु हस्त दर्शन एवं भूमि वन्दनाबाट।